0: cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya.
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
4: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.
5: सुना है यहाँ सिद्धांत राय की दौलत और बच्चों का बंटवारा हो रहा है इसलिए मैं भी आ गया अपना हिस्सा लेने
6: कौन हो तुम
5: जमाना बदल गया है मगर इतना भी नहीं बदला कि आप अपने ढांचे को पहचान ना सके मामा जी मैं हूँ रजीत राय उर्फ राजू I'm sorry बच्चों मुझे आने में जरा देर हो गई लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं क्योंकि अब तुम्हारे साथ है तुम्हारा राजू चाचा बोलो क्या प्रोग्राम है